0: you remember only the words of Ishwa Guruji, nothing else.
1: Yaad karo, to ek matra Guru aur Govind ko yaad karo, dusre ko nahi. Ye smaran bhakti hai.
0: Remembering the smaran bhakti is when you remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
1: Surrender. चरणों में झुक जाना, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है.
0: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of Master.
1: पूजा पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की, दूसरे की किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है.
0: So if you do some puja, if you do some ceremony, do the ceremony for God and Guru. If you follow somebody, follow Guru and God, because otherwise you can get lost.
1: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते हैं.
0: When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called vandana. This next.
1: Dasya, sevak, shishya, usko dasya bhakti kaha gaya hai.
0: Next one is serving, to serve the Guru and God.
1: Dash, अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना अहम आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में, उसको दास बोलते हैं.
0: दास और सर्वेंट इज व्हेन यू रिनाउंस ऑल ऑफ योर आई और ऑफ योर इगोइज्म एंड देन यू डेडिकेट योर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द गुरु.
1: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है, तो उस समय पर गॉड, भगवान, गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, उसको सखा भक्ति बोलते हैं.
0: सखा भक्ति इज द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन you believe and trust your guru so much that he also can become like your friend.
1: Hamare sanatan dharma vedic marg bhakti marg mein dheere dheere arjun jab krishna ke nazdik gaye to bhagwan ne unko phir das ne rehne diya, sevak ne rehne diya, unko sakha bana diya. Sakha mitra,
0: so like
1: friend.
0: When Arjun was with Krishna, he didn't, after some time, he stopped being his servant, he stopped being his sevak, he became his friend.
1: Iske baad mein atmanivedan bhakti aati hai. Bolo, Maharaj ji, ab main aapke saath hi kal subhere chala chalunga. चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया. कहते आत्मनिवेदन.
0: आत्मनिवेदन इज व्हेन यू से आई एम गोइंग विद यू टुमारो मॉर्निंग, आई विल गो विद यू व्हेरेवर यू वांट.
1: वो आत्मनिवेदन है. आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं.
0: सो इट्स रिक्वेस्ट ऑफ द सोल दैट आई वांट टू लिव इन दैट कंडीशन, आई वांट टू लिव इन सच अ वे लाइक अ गॉड इज लिविंग.
1: इसके बाद में फाइनल एमए की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए, वो क्या है, ज्ञान की भूमिका.
0: So the MA, the master degree, is the index of knowledge. It's the last one, or introduction to knowledge.
1: उसमें सात पुस्तकें हैं, उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई,
0: सेवन बुक्स
1: उसमें है। पहली बुक्स क्या है? शुभ इच्छा। क्या है भैया? शुभ इच्छा क्या है बोलो? गुरुजी, अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम काम आना।
0: First book is Swaicha or the own desire, and you say, Gurudev, I want to live with you.
1: Acha, ab
2: dusra. And then he said, I'm most welcome. I'm not stopping you.
3: I have no problem.
2: Come.
1: आपको तो हम एक मीडिया बना रहे हैं। अच्छा, अब बोलो, गुरुजी।
0: गुरुजी।
1: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले ले संन्यास।
0: The second one is, oh Guruji, I think the same like you, and Guruji says, okay, then take sannyasa.
1: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है, उसको कहते हैं विचारणा। उसको क्या बोलते हैं?
0: विचारणा।
1: उसको विचारणा बोलते हैं।
0: Vicharna means thinking. It's like when your thoughts and guru's thoughts are equal. You're thinking like your guru.
1: Tan mansa. Iske baad mein jo hai, pustak hai, tan mansa. Guru se jab vichar milta hai, to jaise badi tanki mein se, pipe mein se paani aakar ghar ki choti tanki mein aane lagta hai, aise hi guru ka gyan shishya mein aane lagta hai. Isliye usko tan mansa bolte hain. Any connection, badi tanki se choti tanki mein connection.
0: So the next one is tan mansa, when the guru, the knowledge of the guru slowly starts to be transferred to the small pot of shishya, of disciple.
1: Sattvapatti. Ab chaturthi jo hai, gyan bhumi suvichha syat, prathama samudhairta, vicharana dutiya syat, tritiya tan mansa, sattvapatti chaturthi syat, पंचमासन से आत्म का पदार्थ भावनी षष्ठी सप्तमी त्रियगास्मृतम। तो चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति बोलते।
0: Sattvapatti is the next step when in guru and disciple there is no difference in their thinking and everything.
1: Padartha bhavani kehte hain. Padartha bhavani. Jaise aapko chai yaad hi nahi aave, coffee yaad hi nahi aave, chutney yaad hi nahi aave, rasgulla yaad hi nahi aave, ice cream, phir 15-15 injection.
0: So the next step is when you even don't remember, you know, neither any sweets or anything, any food you like. There is nothing there.
1: Padartha bhavani ka arth ye hai ki aapke samne stone ho aur aapke paas mein jo hai gold ho, is dono ko aap barabar samjhe, isko padartha bhavani bolte hain.
0: Padartha abhav, the detachment from the anything, is like you can have a stone or you can have a goal, for you this is equal.
1: Nahi pehle asanshakti ye hai. Asanshakti isko kehte hain ki kabhi koi relation mein aapke mother hain, father hain, brother hain, wife hain, children hain, koi bhi hai, inme aap guru ko chhod kar inme aapke man ka nahi jana, usko bolte hain Asanshakti.
0: Asanshakti is when you don't think and then you go back to your family, to your brothers, sisters, wife, parents and children.
1: Ab to hamara ek hi nara, na hum kisi ke, na koi hamara.
0: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
1: Padartha bhavani, jahan sona mitti barabar lage, कोई भी उपलब्धि कोई भी प्राप्ति संसार संबंधी जो अपने को प्रभावित नहीं करती हो उसको शास्त्र ने असंशक्ति कहा.
0: So only after you get detached for your family and so on, you can come to this detachment from the things from this world, like gold and all these things.
1: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था परीक्षित को तक्षक काटेगा और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके. लेकिन परीक्षित डरा नहीं. आप डरोगे जब कोई आएगा ईयर वो क्या ना बोलते उसको
0: सांप स्नेक
1: स्नेक वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे.
0: So like in the in Bhagavata there is this curse of king.
1: इसको पदार्था भाव नहीं बोलते हैं कि किसी से भी हमको खतरा महसूस न हो डरने लगे. और कृष्ण भगवान ने कहा नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नचैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मार. आपको शस्त्र नहीं काट सकता पवन नहीं उड़ा सकता पानी आपको जो है भिगा नहीं सकता है हवा आपको उड़ा नहीं सकती है. ऐसा आपका स्वरूप है उसमें स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी. उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं.
0: सो दिस इज दैट बुक पदार्थाभाव. देयर इज नो फियर ऑफ स्नेक्स देयर इज नो फियर ऑफ डेथ देयर इज नो फियर दैट फायर विल बर्न यू you will drown in the water, that anything will happen with any element. So this is the highest form.
1: Duriya avastha usko kehte hain jab aapke charon taraf samagri padi ho vastu padi ho sab kuch jitna bhi sansar mein wo pada hua ho aur aapki uske prati koi aap mein koi attraction ya koi vritti ya koi work aap usme nahi karte ho तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं.
0: एंड देन आफ्टरवर्ड्स इज तुरिया अवस्था द प्लेस और द माइंड स्टेट व्हेन यू हैव एनीथिंग अराउंड यू एंड देन यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क इन दैट इट
1: डजंट अट्रैक्ट. इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरुजी से इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की वर्क की वो हमने सफल कर दिया.
0: सो इन आवर लाइव्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वी हैव टू पास ऑल दिस टेस्ट एंड वी हैव टू कन्विंस द गुरु एंड द गॉड that we did and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This Acharyaji is telling to us that we should success, we passed and we should successfully pass all Vishwaguruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
1: पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति.
0: श्री दीप नारायण भगवान की जय. देवदी देव देवेश्वर महादेव की जय. इंद्रदान सम्राट महाराज नंजी भगवान की जय. राजगुरु महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शोकनंद भारती जी महाराज की जय.

ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमद्य

जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।

शांति शांति शांति। देवपुरी महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

नारायण भगवान की जय। सो दिस इज डिवाइन भजन आवर होली गुरुजीस इनर हार्ट डिवाइन फ्लावर इज केम आउट एंड ही रॉट इन बुक एंड दिस भजन इज इंस्पायरिंग टू भक्तास ओ डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स मेक योर फ्यूचर इन प्रेजेंट देयरफॉर वेक अप रिमेंबर योर ड्यूटी एंड फुलफिल योर धर्म दैट इज ह्यूमन लाइफ गॉड ऑलवेज इज देयर ओमनीसेंट एंड ओमनी प्रेजेंस एवरीवेयर बट वी नीड टू फील एंड बी डिवोटी बी डिवाइन लाइफ सो दिस ग्लोरी ऑफ द गुरुदेव परंपरास योगीस ऋषिस एंड दे गाइडिंग अस प्रोटेक्टिंग अस एंड गिविंग ऑलवेज द डिवाइन पाथ टू अस सो वी आर वेरी हैप्पी वंस अगेन दैट वी आर हियर एंड वी आर थिंकिंग ऑलवेज टू विश गुरुजीज हेल्थ हेल्थ इज फर्स्ट वेल्थ विदाउट हेल्थ विदाउट गुड हेल्थ इज ऑल वेल्थ इज नॉट सो सो गुड फॉर ह्यूमन लाइफ सो हेल्थ इज नेसेसरी डे एंड नाइट वी आर ऑल डिवोटीज थिंकिंग अबाउट विश्व गुरुजी हेल्थ एंड ही विश्व गुरुजी ऑल्सो थिंकिंग ऑल ऑफ अस एंड वी आर ऑल इन अंडर द वन ट्री एंड वी आर ऑल प्रेइंग अंडर डिवाइन अम्ब्रेला ऑफ माँ प्रभु जी दिस इज डिवाइन अम्ब्रेला

ॐ शिवो नामासे सदिते पिता नमस्तु ते अस्तु न ॐ शिवो नामासे अतिथिं जनानाम् आसन्न भद्रा जनयन्त देवा ऊचो हम्म चो हम्म

0: इनको प्रणाम करवाना साष्टांग। सम्राज मदिदिं जनानाम आसन्न पात्रा जनयंत देवा
1: विद्यानंदपुरेम सन्यासी रूपेण संस्थाप्य
0: स्वामी दे
2: स्वामी दिव्यानंदपुरी
0: दिव्यानंद
3: Yogendra, you shaved because you want to come in the line or what? You just got the face. No, the Divyana.
0: हमें पांच ही कुंडा मारे पांच ही ना इधर यार कुन पूजा कराए तो एक बार इधर हैंग आवे आप पधारो बैठो संकल्प करा रहे अवतारपुरी जी संकल्प करा रहे बैठो हाँ आजा पहले दवा हाथ में जड़ पहले हाँ बाहर तो रहूँगा बात थोड़ा जी नहीं जी अब जिमना पहले जिमना हाथ में जल दो तरपुर जी नहीं दो नर्सिंग नहीं दो ओम मां पवित्र पवित्र वेत्य सेवाम देवी अनुष्टुप चंदा विष्णु देवता रति पवित्र करणे मंत्र जपे विनियोगम पृथ्वी द्वय ओम मां पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि पृथ्वीदाय दत्ता आत्मदत्तम शोदयामि ओम पृथ्वीदाय दत्ता लोका देवी तम विष्णु दत्ता त्वंच धारय मां देवी पवित्रम कुरु चासनाम ओम पृथ्व्यै नमो नमः पृथ्वीदेव्यै नमो नमस्करोमि पृथ्व्यै नमो नमः जगत्मात्रै नमो नमः जगदम्बायै नमो नमः त्रिवारं भूमिं ताडयन्न नसिंग जी निको हम बम बाटक जटिल भैरवनाथाय नमः बम बम जटिल भैरवनाथाय नमः जटिल भैरवनाथाय नमः जटिल भैरवनाथाय नमो नमः भैरवाय नमो नमः हम भैरव अनुज्ञा मे देहि शरणागत वत्सला भक्त्या समर्पय

हाँ जोड़िए, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषाम अविरोधेन पूजा कर्म समारभे अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाग्य अपक यदत्र संस्थितं भूतम स्थानमाश्रित सर्वतक्त्यातो तत् स्थानं यत्र स्थं तत्र गच्छन्तु भूत प्रेत पिशाचाद्य ओम निवारणम हम हम भटक भैरवनाथ भैरव स्मरणम ध्यानम भैरव जी का ध्यान नहीं हम करगलित कपाल कुंडले दंड पाणी तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञो पवीति क्रतु समय सपरयाम विघ्न विच्छेद हेतु जयतु भटकनाथ सिद्धि साधका नाम अनेन ध्यानेन बटुक भैरवनाथ सिद्धिदायको मे भवतु सर्वसंकल्प सिद्धिदो मे भवतु गुरुम गुरुमंत्रम च स्मृत्वा वर करो पहले गुरु गुरु स्मरण मंत्र को गुरुम गुरुमंत्रम च स्मृत्वा ओम गणपतिम संस्मृत्य यस गुरुम गुरु मंत्रम च स्मृत्वा सुमुखस्य गजानन जी का

0: मात्रा दे दी,
1: वी वांट घी,
2: यस
1: इनसाइड वी हैव पत्ती आल्सो। ए जयदेव अपन वत्ती इन कटर कटोरी में नहीं, कहां पर है?
2: हाउ हाउ मेनी
1: बत्ती है क्या?
2: बत्ती,
1: यस गिव मी कॉटन हियर, यस
3: नर्सिंग
1: मिनिस्टर।
3: You all can go and greet him and offer dakshina and congratulate them both when they sit. Let them come and you can congratulate them.
4: प्रथम मेखला पूजन, द्वितीय मेखला पूजन, तृतीय मेखला पूजन, यज्ञ आरंभ होता
1: तो जब चार चार बैठा नहीं,
4: सब सबको बैठा देता है ना?
1: नहीं यूं तो मत बैठा,
4: थोड़ी देर बात करो,
1: इनका क्या
4: नारंग जाएंगे जब
1: नहीं स्टार्ट करो अब तक कोई नहीं
3: क्या हुआ आपके थोड़े के साथ बैठे ना थोड़ा है नहीं ना
1: नहीं यहाँ सब अकेले ही है सब यहाँ तो अकेले ही है
3: बच्चा सो रहा है तो ये लेकिन
1: एक बार दीप प्रज्वलन जयदेव इसमें घी डालो दीप प्रज्वलन करो ओम शौनास्मे भव पृथव्या भवान्निक्षरा निवेशनीयच्छाना सर्वसप्रदां पृथ्वीदेव्यै नमो नमः भवान्यै नमो नमः घी लगे मन ओम वो अपना लाइटर है आपके पास लाइटर ले जाओ
3: नहीं
1: लाइटर पड़ा था ना काम उसी में होगा
3: योगेंद्र
1: यस
3: लाइटर माचिस
1: लाइटर लाइटर है यहाँ पर कहीं
3: ओके वी फाउंड इट योगेंद्र

0: प्रहिणामि दूरं यमराज्यं गच्छदुर्वदितीयस्तां जातवेदसाम् अग्निदेवं रणे अग्नये नमः। अग्निदेवस्य स्वागतं समर्पयामि, पादयोर्पाद्यं समर्पयामि त्रिवारं। अग्निदेवस्य पादयोर्पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि, मुखे याचमनीयं समर्पयामि, सर्वाङ्गे स्नानीयं, पुष्पार्चनं, धूपार्चनं, दिव्यार्चनं स्वागतं ते समर्पयामि अग्नये नमः। परिक्रमां अग्निदेव की परिक्रमा ओम वरुण से उदम्ब नमसे वरुण स्कंभ सर्जनी स्तव वरुण से रित सद नमसे वरुण से रित सद नमसे वरुण से रित सद नमसे वरुण से रित सद नमसे अग्नि वरुणाभ्याम नमो नमः। अग्निदेव से पूजना पूर्व काम प्रतिष्ठापन समर्पयामि। अग्निदेव को अग्नि कोण में रख दो चाहिए होने
1: आपको
0: साष्टांग दंडवत करेंगे। नहीं भाई बैठ कर न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः शिवशासनतः शिवशासनतः इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् त्वमेव शिवम् मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो नमस्कृत्वा यन एक जगह बैठा है तो अग्निदेव को नमस्कार करो। ओम दी अग्निज्योति ज्योतिरग्नये स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्याय स्वाहा अग्निर्वर्जौ ज्योतिर्वर्जः स्वाहा सूर्योवर्जौ ज्योतिर्वर्जसे स्वाहा ज्योतिसूर्य सूर्या ज्योतिषे स्वाहा। ओं भूदीपदेवस्वरूपस्थं जगदं प्रकाशसे यावत् मम पूजा कर्म समाप्तिर्स्यात् तावत् त्वं स्थिरो अनेन पूजनेन दीपदेवता प्रियन्तां न मम अग्नये नमः।
2: अब गण यू ऑल कैन गो लाइक दिस फ्रॉम देयर मेक प्रणाम एंड देन गो फ्रॉम देयर बैक।
0: अब गणपति ध्यानम
2: करो।
0: गणपति ध्यान
1: वो एक बार वो
2: न्यास करा दो।
1: न्यास करो
0: पहले न्यास करें।
1: न्यास
0: सबका लिखवा रही है कि ओम न्यास ओम।

ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम नम तर्जनीभ्याम स्वाहा ओम मम मध्यमाभ्याम वौषट ओम श्रीमनामिकाभ्याम वखट ओम वाम कनिष्ठिकाभ्याम नमः ओम यम कर्तकलकृष्पष्टाभ्याम ओम फट स्वाहा ओम गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्रं बृहस्पतिं पंचेतांसं।

गणपति ध्यानम गणपति का ध्यान कर आवाहनम हम गण गणपति आहोयामे गजानन जी का आह्वान करो भाई जय देव हम आगच्छ देव देवेश तेजो राशि जगतपते क्रियमाण मया पूजा गृहाण सरसदम भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्मागणाधिपतये नमः आह्वानार्थे पुष्पम समर्पयामि। एक आह्वान के लिए पुष्प दे दीजिए और एक आसन के लिए और हाथ में दे दीजिए। हम पुरक एवेदकं सर्वं यदभूतं यजभव्यं माउदामृततु जैसानो जदन्नेनाधिलोहति आसनम आसनम सम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्मागणाधिपतये पुष्पासनम च समर्पयामि। त्रिवारं पाद्यम ओम पादयोर्पाद्यं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं च समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्मागणाधिपतये मुखे आचमनीयं च समर्पयामि स्नानम्।

0: शुद्ध उदक स्नान समर्पयाम। एक बार शुद्ध उदक वापस स्नान करा दीजिए। वस्त्रम वो मोड़ चढ़ाओ। हम तस्माद् यज्ञा सर्वहुदा सर्वहुदा ऋचा सामानि जगिरे छन्दागुंस जगिरे यज्ञोपवीतं समर्पयामि
1: मया ततः गावो जगिरे तस्माद्
0: जाता अजावय
1: यज्ञं मरेहि प्रोक्षन् यज्ञं जातमकृतः।

ओम विशुद्ध चक्षु विशुद्ध मुख विशुद्ध भाव विशुद्ध संपाद संभाव व्यान समस्त पतते ध्यावा भूमि जनयन्न देवैकामेक दन्ताय विद्महे तन्नो दन्ते प्रचोदयात् पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्मागणाधिपतये मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम जत्पुरुकेणाविका देवाय यज्ञमलन्मलन् ग्रीष्मैत्मा शरद हवे ओम संपरिदय

0: जयदेव बोल जंक्शन इन द हैंड
1: borrow from hey, here, look, give 10 euros. Take 10 euros. Later we'll give you back. Om Asti Asri.
2: Om Vishnu Vishnu Vishnu Vishnu Vidrajnaya Pravardhamana Siddhya Brahmano.
3: द्वेसहस्रतमे
2: मासे पूर्ण पवित्र मासे
3: ज्येष्ठ
2: मासे अद्यतितो अष्टम्यायाम
1: ब्रूमाट गोत्रे
3: शुक्ल पक्षे हे अष्टम्याम तिथौ हो
2: अद्य
3: अद्य वाराधिपते हे अद्य
2: कश्यप गोत्र उत्पन्न
3: नाउ योर गोत्र
1: ब्रूमाट
3: ब्रूमाट गोत्र उत्पन्न हम कश्यप गोत्र तथा ब्रूमाट गोत्र उत्पन्न हम भावयातमि स्वामी वर्यः मम
2: इनका पिताजी का इनका पिताजी का नाम इनका दादा का नाम
1: सेय फादर्स नेम
2: ग्रैंड फादर नेम
1: नाउ योर मदर
2: माताजी का नाम
3: नाउ योर माताजी
2: और इनके ग्रैंड माता जी का नाम
1: है
2: ना आप समझ ही रहे हैं पूरा परंपरा का
3: परंपरा का श्री पूरा महामंडल अबर
1: स्वामी अवतार पुरी ओम सही और नेम
3: योर
1: ओन नेम
2: योर नेम
3: ओन नेम मामो उपादो तो चरतम ब्रह्म वर्चस कामार्दम सदेश प्रति
1: योर नेम
3: पुण्यम फलम च प्राप्तार्थम मा श्री गणेश भोजनम मा श्री सर्वतो भद्र मंडल
2: मातृका
3: नवग्रह मंडल भोजनम मा षोडश मातृका पूजनम
2: भूमि पूजन
3: यज्ञ वेदी पूजनम
1: भूमि पूजन
3: कर्मम च यज्ञ वेदी पूजन कर्मम च यज्ञ यवने पूजन कर्मम च यज्ञ पात्र पूजन कर्मम च मया करिष्ये इति
1: संकल्पः
2: यज्ञ जाग्रत उदूरमुदय इति देवान्तर शुद्ध सिद्ध दैव इति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरे गन्धं मे मनः शिव संकल्पः यज्ञ जाग्रत
3: उदूरमुदय इति देवान्तर शुद्ध सिद्ध दैव
2: शिव संकल्पमस्तु बोले गजानन जी महाराज की एक बार परंपरा का जयकार करो
1: ओम शलकपुर जी महादेव की
4: जय
1: देवाद देवेश्वर महादेव की
4: जय
1: सुदीप नारायण भगवान की
4: जय
1: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी सद्गुरुदेव भगवान
4: की जय
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुरी जी गुरुदेव की
4: जय
3: अनंत श्री महामंडलेश्वर स्वामी

0: बोले स्वामी गुरुदेव महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। अब मातृका पूजनम अटैच कराए तो
1: नहीं वही करो
0: मान लीजिए। आग्नेया मातृका पूजनम समर्पयामि लोटा जल संकल्प सब लाद लीजिए। समूह पहले गणपति पर ध्यान करो। ओम गणानंदवा गणपति गम हवामहे प्रियानंदवा प्रियपति गम हवामहे निधिनंदवा निधिपति गम हवामहे वसो मम मां जानिकपदम मा ओम गम गणपतये नमो नमः गणपतये गणपतिं संपूजयन्न मातृगणं मा गणप रेष्पतिर् ददातु। ओम गौर्यै नमः गौरी मावायम स्थापयम एक एक फूल धराय दो जयदेव पुष्प है ना ये ओम गौरी नम गौरी मावायम स्थापयामि ओम पद्माये नम पद्मा मावायम स्थापयामि सच्चे नमः सति मावायम स्थापयामि ओम मेधाये नम मेधा मावायम स्थापयामि पूजयामि ओम सावित्र्यै नमः सावित्र्यै मावायम स्थापयामि पूजयामि ओम विजयाय नमः विजयाम मावायम स्थापयामि पूजयामि ओम जयाय नमः जयाम मावायम स्थापयामि ओम देवसेनायै नमः देवसेनाम मावायम स्थापयामि पूजयामि च ओम देवसे स्वधायै नमः स्वधाम मावायम स्थापयामि पूजयामि ओम स्वाहायै नमः स्वाहा मावायम स्थापयामि ओम स्वाहाय नमो नमः मातृभ्यो नमः मातरम् आवायम स्थापयामि पूजयामि च ओम लोकमातृभ्यो नमः लोकमातरम् आवायम स्थापयामि पूजयामि ओम धृतियै नमः धृतिम् आवायम स्थापयामि पूजयामि च ओम पुष्टियै नमः पुष्टिम् आवायम स्थापयामि पूजयामि च ओम तुष्टियै नमः तुष्टिम् आवायम स्थापयामि पूजयामि च ओम तुष्टियै नमः तुष्टिम् आवायम स्थापयामि पूजयामि च ओम आत्मना कुलदेवतायै नमः कुलदेवताम् आवायम स्थापयामि च ओम कुलदेवता मध्ये कुलदेवतां सम्पूजयामि आवायामि स्थापयामि।

अर्धा पूज्य पूज्यो पूज्या षोडशा ओम गम गणपतये नमः। गणपति ने बुलाए दो, एक जन जी अट विराजमान गणपति इज देयर खाली यू ब्रिंग देयर। ओम गम गणपतये नमः। मनोज्योतिर्जगदाम यज्ञगम समिमं दधातु विश्वे देवा यमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा अनया प्रतिष्ठया सर्वे देवा सुप्रतिष्ठता सर्वामात्रा सुप्रतिष्ठा वरदाभीष्टदा संकल्प सिद्धिदा भवन्तो परिक्रम्य जलेन परिक्रमां विधाय। जल से परिक्रमा कर लो। संपूजयामि पुष्पधूपे संपूजयन् गणैः गणशं संपूजयामि फलेन अर्घं समर्पयामि। हाथ में जल दे दो। संकल्पं होमे जपे विनियोगः वस्त्राणि वस्त्रं सभी ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम सर्वेभ्यो नवग्रहेभ्यो नमो नमः। सबों पहला सूर्य भगवान ओम सूर्याय नमो नमः। ओम आकृष्णय नरसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मृदञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् सूर्याय नमः। सूर्यम् आवयम् स्थापयामि पूजयामि च। ओम इमं देव सुभद्रं सुभद्रं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते गम राजा। ओम चंद्रमसे स्वाहा चंद्रमसम् आवयम् स्थापयामि पूजयामि च। ओम अग्निर्मूर्धा देवा ककुत्पते पृथिव्यायम अपाम गम्भ्रेदांसु जिन्वति भूमाय स्वाहा इदं भुवम् आवयम् स्थापयामि पूजयामि च। ओम उद्वस्वाग्ने प्रतिजग्रहितम् इष्टापूर्ते संसृजेदामयं च जेदतं बुधाय नमः। ओम बुधम् आवयम् स्थापयामि पूजयामि च। ओम बृहस्पतये यदि यदर्यो यारां दुर्विपाते कतमजनैषो यदि वचरित प्रजा तस्माद् द्रविणं देहि मे चित्रम्। बृहस्पति आवयाम स्थापयामि पूजयामि च। अन्नात् परिशुद्धौ रसं ब्रह्मणा व्यपद्यत क्षत्रं वयसोमं प्रजापते विपानकं सकरं मन्दसा इन्द्रचन्द्रमयदं वयोमृतं मधु शुक्राय स्वाहा। ओम शुक्राय शुक्रम् आवयाम स्थापयामि पूजयामि च। ओम सन्नो देवीर्विष्टयावो भवन्तु स्पीदै शम्भ्योरभि श्रान्तुनां शनिश्चराय नमः। शनिश्चरम् आवयाम स्थापयामि पूजयामि च। ओम कयान चित्रा भुवदूते सदा वृदा सकाय कय सचिष्टया वृदा। ओम केतुम केतवे नमः केतुम आवयामि च। राहवे नमः राहुम आवयामि।

0: अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परे भोरसे सद्देवेषु गच्छते अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र श्रवस्तमादेवीरागमत् जलं दधाशुके त्वमग्ने जद्भद्रं करिष्यसि तवे तत्सत्यमङ्गिरा उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त्रधिया वयं नमो भरन्तयेमसि राजन्तमध्वराणां च गोपामृतस्य दे देवीं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सुन्वेग्ने अग्ने सूपायनो भव सजस्वानः अग्निदेवाह्वानं मया करिष्ये अथ अग्निपूजनं मा बाबूजी पुष्प के द्वारा ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा गालो द्वारजा पुष्पाञ्जलि मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरः
1: एक बार अग्नि रच परिक्रमा कराए तो ओम वरुणस्य उदम्बनमसि वरुणस्कं वसर्जिस्तौ वरुणसिरितसदन्यसि वरुणसिरितसदनमसि वरुणसिरितसदनमासि अग्नि वरुणाभ्यां नमो नमः अग्निदेव सुप्रतिष्ठितौ वर्धो अभिष्टदौ संकल्प सिद्धिदौ भवन्तु नित्यमेव अब तिलकाम यजमान के आप अवतार पूजा आप कीजिए ओम स्वस्तिनायन।

अवयसख्याय जिन्वता पूजनयदाचनारितं चासदियां चाभिद्धात् तपसोद्यजायता ततौरत्यजायततः समुद्रोर्णवः समुद्रादर्णवादति समुसरोजायतहोरादर्णविदतमिकतोऽसि सूर्याचन्द्रमसोद्धाता यथा पूर्वमखल्वद्यं वृतं चान्तरिक्षमतः स्वाहा ॐ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गुरुभिस्मरितमुण्डलिकाक्षां सवति बाह्याभ्यन्तरशुचि आत्मतद्वं शोधयामि अभी यानी जल्दी प्रवेश करा दे मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दवदासो

पृथ्वीतत्पिता तद्ग्रावाण सौमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं धिष्णया युवम् तमीशानं जगत तस्तु कस्पति जिन्वमवसि ॐ महि वयम् उखा नो यदा वेद साम सद्वृधे ॐ स्वस्ति न इन्द्रौ रथ शर्वाः

0: जय देव।
1: नारंगी जी आ गए हैं, इनको भी तिलक करके इनका भी बंद
2: कर दिया। कर दिया तिलक।
1: इनका बंद
3: बांधूंगा।
2: This is your pocket money, keep for you.
0: Om yada vadnandakchayana hiranyagham sadani gaya sumanasya mana
2: dhamma
0: vadanami saradayusun jardashiriyata samamma.

ॐ ईशानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा ॐ अनंताय स्वाहा एक बार जल की प्रदक्षिणा ओम ते देवा ते दिक्पाला वरदा अभिष्टदा संकल्प सिद्धिदा वरदा भवन्तु नित्यमेव

पुष्टिवर्धनम् पुरवारुकमिव बन्धनात् मृद्धोर्मुक्षेयमामृता स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

0: स्वाहा ओम जागते छंदसे स्वाहा ओम गायत्री छंदसे स्वाहा ओम त्रिष्टुभ छंदसे स्वाहा ओम जागत जगत छंदसे स्वाहा ओम गायत्री छंद गायत्री त्रिष्टुभ छंदेभ्यो स्वाहा ते छंदः सुअभिष्टदा संकल्प सिद्धिदा वरदा ते देवा शांतिदा पुष्टिदा वरदा भवन्तु नित्यमेव। एक बार जल की प्रदक्षिणा होने जयदेव राउंड ऑफ वाटर पानी की जल नरसिंह जी मेक परिक्रमा वाटर थ्रू वाटर
1: विद द वाटर जस्ट टेक अ फ्लावर फ्रॉम द वाटर एंड जस्ट डू लाइक दिस
0: यस चले गुड यस फायर
1: विक्रम रुक सकता है गाड़ी में
0: ऑल कौन शुड बी स्टार्ट
1: रुक सकता है।

0: ओम मा राइट पहले मातृका ऐसा बैठ जा करा पहले आए थे गौरी पद्मासन चल
1: ओम भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणोमिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदेवं त्वं तस्मै दिशजि निजसायज्य पदवीं मुकुन्दा ब्रह्मेन्द्रस्फुटमुकुटनीराजितपदाम् ओं गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुं निधेनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदं त्वमजासि गर्भदं मा गं गणपतये स्वाहा ॐ गजस्य गणनाथत्वं सर्वविघ्नविनाशन लम्बोदरत्रिनयन आगच्छ गणनायक मध्यमे गणपतये स्वाहा ॐ आयंगो प्रश्निरक्रमे सदनमातरं पुरःपितरं च प्रयत्स्वः हिमाद्रितनयां देवीं वरदां भैरवप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीं आवाहयाम्यं ॐ गौर्यै स्वाहा ॐ सुवर्णाभ्यां पद्महस्तां विष्णु वक्षस्थले स्थितां त्रैलोक्यम्बुजितां देवीं पद्माम् आवाहयाम्यं पद्मायै स्वाहा ॐ उत्पलाक्षीं सुवदनां सचिकुण्डलधारिणीं देवराजप्रियां भद्रां सचिम् आवाह

ओम भूमाय ओम मधुसाग्नि प्रतिजाग्रितम् इष्टापूर्ति संसृते सदामयम् अस्मिन्न सदसि यद्यत्वसरस्मिन्न विश्वे देवा यजमानसि ददास् बुद्धाय ओम बुद्धाय स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा ओम बृहस्पति यदि अदर्यो राज्यम विवादि कतम जनेषु यदि विशचरित प्रजा तस्मादस्मा द्रविणम देहि चित्राम स्वाहा स्वाहा ब्रह्मणा व्यपद्वदक्षत्रं पायसोमं प्रजापतिरिदे न सदिमिन्द्रं विवानं सुक्रमन्दस इन्द्रसिन्द्रं मिदं पयोमृतं मधु शुक्राय स्वाहा ओं शुक्राय ओम सन्नौ देवीरभिष्टय आपौ भवन्तु भीतये संयौ रविश्रवन्दना शनैश्चराय ओम शनैश्चराय ओम शनैश्चराय ओम कयान चिद्राभुवधूते सदा व्रत सखा कया शिष्टया वृता।

ओम शुक्र ज्योतिष ज्योति चित्र ज्योति ज्योति सत्य ज्योति ज्योति ज्योतिष्मान शुक्रश्च दबरित पाशाद्यं स्वाहा ओम आयंगौ प्रश्न मदात्र पितरं प्रयंत स्वाहा ओम ब्रह्म जिज्ञानं प्रथमं पुरुषावासी मद सूरचौ वैन आवास वन्या उपमा यस्य वैष्ठा सदस योनि

श्रीया चित्रगुप्ताय हस्ते जलमादाय इमानि हव्यानि द्रव्याणि याया यक्ष्मणं देवताभ्यः परित्यक्तानि इदं न मम ॐ सन्ना सुपिदेव सुनग्ने सुपायिनौ भव स च स्वाना स्वस्तये इदम् अग्नये स्वाहा ॐ मातो वदेव विचरन् सिग्रमे पशुनुगा आम सवर्ष प्रजया ॐ अद्भ्य स्वाहा ॐ पृथव्ये स्वाहा ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे समुर इदं विष्णवे स्वाहा ॐ इन्द्राय स्वाहा ॐ इन्द्राण्ये

0: ओम अश्विनी कुमाराभ्याम ओम दे देवा शांति। हाथ में जल दे रखे उनको
1: अर्पण। अगेन नरसिंह जी राइट हैंड वाटर एंड परिक्रमा विद द वाटर एंड
0: ते देवा शांतिदा पुष्टिदा वरदा वरदा अभीष्टदा संकल्प सिद्धिदा भवन्तु नित्यमेव। हो गया ये। ओम सर्वतो भद्र स्थितेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो देवताभ्यश्च स्वाहा। ओम पुरुष निकाल दे।
1: ओम हरे हे ओम।

0: हस्ते जलमाद
1: हस्ते जलमाद नरसिंह जी इन द राइट हैंड वाटर
0: सर्वतोभद्रमण्डलाय
1: अद सर्वतोभद्रमण्डल देवतानां कृते आहुतिं मया संप्रददे
0: इदं न मम सोलह रुद्र महादेव फॉर महादेव कहते एक बार क्या महादेव जी के मंदिर
1: के लिए फॉर शिवा भगवान शिवा
0: लॉर्ड महेश
1: फॉर महेश्वर महादेव वी आर गिविंग द द प्राण प्रतिष्ठा द भूमि पूजन नाउ फॉर दैट टाइम
0: और भूमि पूजन अच्छा हो और संकल्प सिद्ध हो यूं बोल
1: कदम
0: तो क्या नहीं
1: एंड वी आर डूइंग थ्रू दैट अवर संकल्प थ्रू द मेकिंग ऑफ द शिवा टेम्पल द महेश्वर महादेव विच विल बी हियर वी आर सिटिंग हियर दिस इज द प्लेस where will be the big Shiva temple so yeah
0: oh there
1: is some yeah it will be long till like this
0: but all will be like temple
1: so this is the sankalpa pratishtha sankalpa we are filling our sankalpa
0: by heart
1: we will make this through the yajna
0: support
1: yeah
0: supported for supporting to yajna
2: neither yes. nothing Neither you will remember nor they will remember where the Yagyas was 6 months later. Here or there, same thing.

0: माहेश्वराय स्वाहा.
1: महेश्वर रुद्राय स्वाहा.
0: ॐ वासुयौ वा सर्वदिन नीलग्रीवो विलोहिता उदयनंगो वा अदृशन्नदृशन्नुदहार्य सदृशौ मृळयादिना.
1: महेश्वर रुद्राय
2: स्वाहा.
0: महेश्वराय.
1: ॐ नमोस्तु नीलग्रीवाय
0: सहस्राक्षाय मीडुके यतो ये यशद्वानो वन्दे गौकरं नमः.
1: महेश्वर रुद्राय
0: स्वाहा.
1: ॐ प्रमुञ्च धन्वसुतो वयोरात्न्योर्ज्यां
0: यश्च.

0: ओम परिनो रुद्रसेतुवृणक्तो दुर्मदीरदायो वसिरामगवद् धनुर्धमीडवस्तोकाय धनयाय मृड
1: रुद्राय स्वाहा। मेरुतम शिव तम शिवो नः सुमना भव परमेवर्षायुधनदयकृतिवासराजनपिनाकम्पिप्रदागहे रुद्राय स्वाहा। विज्ञेतद्रविलोहित नमस्तेऽस्तु भगवा यास्ते सहस्रकम् हेतयो अन्नसुनिबन्धुदाः रुद्राय स्वाहा। सहस्राणि सहस्रो बाहुस्तव हेतय तासाम् ईशानो भगवा पराजीना मुखं कृते रुद्राय ॐ नमः सुरुद्रेभ्यो जय दिवीं जय
0: कं वर्गमिकवतेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रदेशे दशोदेशे दशोद्वाहा तेभ्यो नमो वसुदे नो वन्तु दे नो मृळयन्तु तेयं विष्णो यशनो द्वे

यौवा शिवतमो रसस्तस्य भाजयदयाना उषतीरिव मातर तस्मा अरंगमाम अवयक्षक्षयाय जिन्नवद आपो जनयदा जन स्वाहा। ओम दौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहदय शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वे

ओम अग्ने स्वाहा कृणु जात वेद स इंद्राय यगे विश्व देवा हविदम जुकंताम ते देवा शांतिदा पुष्टिदा वरदा विष्टदा संकल्प सिद्धिदा भवन्तु नित्यमेव।

अब एक सप्ताह दूसरा करा था ना कर दी बैठ जा मैं करा दूं तुम्हें तुम ध्यान रख जा नहीं मैं करूं हस्ते जलमादाय ओम गम गणपतये नमः गम गणपतये नमः गम गणपतये नमः नमः गम गणपतये नमः नमः इयं वेदी परवन्त पृथिव्या अयं सोम वृष्णो वसुचरेत अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनसेनापि ब्रह्माय वाच परमं व्योम्ना ओम पूजयामि यो कुण्डं पूजयामि ओम भूस्वा इदं अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं न मम ओं भुवस्वाहा इदं वायवे इदं न मम ओं स्वसूर्याय इदं न मम ओं

ओम षष्ठाय स्वाहा ओम सप्तम अष्टामाभ्याम स्वाहा ओम नीलनखेभ्य स्वाहा ओम हरिदेभ्य स्वाहा ओम क्षुद्रेभ्य स्वाहा ओम पर्यायकेभ्य स्वाहा ओम प्रथमेभ्य संखेभ्य स्वाहा ओम द्वितीयेभ्य संखेभ्य स्वाहा ओम तृतीयेभ्य संखेभ्य स्वाहा ओम उपोत्तमेभ्य स्वाहा ओम उत्तमेभ्य स्वाहा ओम उत्तरेभ्य स्वाहा ओम ऋषिभ्य स्वाहा। तो बोलो हम स्वाहा बोलो।

0: जुष्टावरेषु समनेषु वल्गुरुषं पत्यासो गमसे त्वस्यै
1: स्वाहा।
0: ओम सौम जुष्टम रम जुष्टम मरियम।

स्कन्दवदनेन वृक्षम् अन्यत्र स्मद सवितास्तमिदौ दाहिरण्यस्तौ वसुनौ रराण ॐ एकसत्मा लक्ष्म्यौ अमृतसाकं तन्वाजनुसोदिजाता दासां पापिष्टा निरतप्रहन्मे शिवा अस्

ओम त्रेष्टुभ छंदसे ओम त्रेष्टुभ छंदसे ओम त्रेष्टुभ छंदसे ओम जागते छंदसे ओम जागते छंदसे इद तद विदुष्टे अमृतम मानमासु स्वाहा ओम गायत्रेण मिमीते अर्कमर्गेण सामत्रेष्टुभेन वाकं वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमीते सप्तवाणी स्वाहा जगदा सिंधु दिवसकभयाद्रतन्तरी सूर्यं पर्यपश्यत गायत्रस्य समिधस्त्रिश आहूतदो महाप्ररिचे महिद्वा स्वाहा ओम यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपदिं गच्छ स्वायोनिं गच्छ स्वाहा एकदे यज्ञो यज्ञपदे स सुक्तवाग सुवीर्य स्वाहा ओम बकड़तेभ्य बकड़ुतेभ्य देवा गातु गातु विदो गातु विद्वास्

चर्षणीनां वसूनां मिरज्यत्य इन्द्र पञ्चक्षितीनां स्वाहा इन्द्र ॐ इन्द्र वो विशद परिहवामहे जनेभ्य अस्माकम् अस्तु केवलः स्वाहा ॐ इन्द्र सानसीरै सजिन्वा सदा

विदते यस्ताय वज्र प्रतिधाय दर्शतो महो दिवेना सूर्यस्वाहा ओम आषाढं मुग्रं प्रदनासो सन्निधेन वै नक्षामनसो स्वाहा यं यदधावाइन्द्रते शतं शतं भूमिरुदस्यो नादासरुस सूर्य अनुजातमष्टं रोदसे स्वाहा ओम ते देवा शांतिदा पुष्टिदा वरदा विशदा संकल्प सिद्धिदा नित्यमेव कितने बजे ओम मादरुद्रारूपेण यज्ञमारभामहे ओम वाजश्च मे प्रजावश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे दिधिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे स्वश्च

यचमे वसीयचमेश नकलबंदाम स्वाहा उक्षम चमे सुंदरदा चमे पयश्चमश्चमे गर्दम चमे दोष चमे सगदेश चमे सपेदेश चमे कृषि चमे वृक्षि चमे।

नक्षत्राणि दिव्यांतरिक्षे ओम नक्षत्र यानि नक्षत्राणि दिव्यांतरिक्षे एवसु भूमो यवनो नगेशु दिक्षो प्रकल्प चंद्रमा यानि ते सर्वणां मामेति शिवानि संतु स्वाहा। ओम अष्टाविंशानि शिवानि सग्मानि सायोगं भजन्तु मे योग।

सुसायं सुदेवं सुमृगं ससुगनं मेयस्तु सोहमं अग्ने स्वस्त्यं मर्त्यं गत्वा पुनरायाभिनन्दनं स्वाहा। ओम अप पापं परिक्षं पुण्य भक्षी महेक्षवं शिवाते पापं नाशिका पुण्य

यम शिवम तमास्क्रदे स्वाहा। ओम स्वस्ति नौ अस्तुभ्यं नौ अस्तु नमो अहोरात्राभ्यां अस्तु स्वाहा। ओम शांता दौ शांता पृथ्वी शांति अंतरिक्ष शांता द्विरं शांता नौ शांतौ कदे स्वाहा। शांतानि पूर्वरूपाणि शांतं नौ अस्तु कदा कदं शांतं।

0: संकल्प शुड बी ग्रेटर देन वी कैन डू एनीथिंग ओके सो दोर बेलियो अमर सेवाड़े हारा हारा हारा मारे
1: काम नहीं रुकना।
2: बारह बजे आने पड़ेगा।
1: हाँ, सांझी ना सांझे।

ओम कुबेराय स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम अनंताय ओम एवं ते देवा शांतिदा पुष्टिदा वरदाभीष्टदा संकल्प सिद्धिदा भवन्तु नित्यमेव। Now we are going to Bhumi Pujanam. Bhumi Pujan Mantra. No? Om Satyam Pradamukram Dikshatapu Brahma Yajya Pratavim Dharayante Sano Bhutasya Bhavyasa Patnyurudam Lokam Pratavim Nahakrunotu Swaha. ओम संबादम मध्यदो मानवान यशा उद्वत प्रवदा समंबहु नाना वीर्या ओकदिर्या विवृति पृथ्वी ना प्रथमं राज्यदाम नः स्वाहा। ओम यस्या समुद्रम उद सिंधुरावो यस्या मन्नम कृष्णवो संभवु यस्या मिदम जिन्वति प्राणजेदम सानो भूमि पूर्वपेदेय ददातु स्वाहा। ओम यस्या चतस्र प्रदिशा पृथिव्या यस्या मन्नम कृष्टय संभवु या बिभ्रति प्रदा प्राणजेजस सानो भूमि।

ओम विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जागतौ निवेशिनी विश्वानरा बिभ्रति भूमिरग्निमिन्द्र वृषभा द्रविणौ ददातु स्वाहा। ओम या रक्षन्तः स्वना विश्वदानी देवा भूमिं पृथ्वीम् अप्रदादं सानो मधुप्रियं दुहा मधो उक्षद वचसा स्वाहा। ओम यार्णैर्वासलिर्नमग्रमासीद् मायाभिरन्वमसि मनीषा यस्यां हृदयम्।

प्रचोरय हिरण्य चंद्र सीमानो दीक्षता कश्चन स्वाहा। ओम अग्निर्भूम्या ओ गदेन सुग्निमापो विवृद अग्नि रश्मसो अग्निरंतं पुरुषे गोसु अग्निश्चग्नयः स्वाहा। ओम अग्निर्देव्या तपति देवेषु अन्तरिक्षम अन्द अग्निर्माता स इन्द देह विवाहं कृतं प्रियं स्वाहा। ओम अग्निवास पृथ्वी सुदग्निमिकन्दं सचिदं माकृणोतु स्वाहा। ओम भूम्यां देवीभ्यो ददति यज्ञं भव्यं भूम्यां।

दानवासुर भीम कर्णो मा नौ दीक्षता कश्चन स्वाहा ओम यस्ते गंधा पुष्करमा विवेश यम संभ्रव सूर्या वा विवहे अमृत्या पृथ्वी गंधमग्रे तेन सुर भीम कर्णो मा नौ दीक्षता कश्चन स्वाहा ओम यस्ते गंधा पुरुषैषु स्त्रीषु पंसु भगौ रुचेयो अश्वेषु वीरषु मृगेषु हस्तिषु कन्यायां वर्जो यद भूमि तेनास्मम् अभिसंसृति नो दीक्षद कश्चन स्वाहा ओम शिला भूमिरस्मा पांशु व्यासा भूमि संदृता दशे हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरम नमः स्वाहा ओम यसा वृक्षसा वनस्पतय ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वा पृथिवी विशुदा यसं धृता मच्छा वदामसि स्वाहा ओम उदीराणाम उदासीना तिष्ठन्त परमकर्मत पदभ्यां दक्षिणमसव्याभ्यां व्यतिष्ठमहि भूम्यां स्वाहा ओम विग्मृग्वी पृथ्वी ममा वदामि क्षमां भूमिं ब्रह्मणा वा वर्तमान ऊर्जं पुष्टिं विवृतिं मन्नभाग

यदरादयश्च पश्चात् अस्यो नास्ते मह्यं चरति भवन्तु मा निपतब्धं भुवनेश श्रियाण स्वाहा। ॐ मानपशपुरस्तादुनिष्ठामोदरदस्वति भूमि न भव विदन्न परिपन्तिनो वर्यो यावयदावधं स्वाहा। ॐ तावते विपश्यामि भूमे सूर्यमे दिना तावने चक्षुर्मसौ।

ओम यत्ते भूमे विकनामे क्षिप्रम तदपु रोहतु माते मर्म विग्रमवे माते हृदयम अर्पिपम स्वाहा। ओम ग्रीष्मस्ते भूमे वर्गाणि शरद्मै हं हेमन्तं शिशिरो वसन्ता ऋतवते सायन अहोरात्रि पृथिवीं नो दुहातमं स्वाहा। ओम या सर्वं विजम विग्रमै यस्याम सुग्नै अपसवन्ता स्वरा दस्युं ददति देवपेन धृणां पृथिवीं न व्रतं शुक्राय दद्रे वृषभाय वृष्णे स्वाहा। ओम यस्याम सन्दो विदाने यपो यस्याम निमीयते ब्रह्मणो यस्याम अर्जुनं साम्ना यजुर्विदं युजन्ते यस्यमृतं सोमाम इन्द्राय पातवे। ओम यस्या पूर्वे भूपूत कृतऋषयो उद्गा उदानिषु सप्त तत्रेण।

ओम यस्याम गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या विल्वा युध्यन्ते अस्माकं कृते यस्याम वदन्ति द्वन्द्वे सा नो भूमि प्रणुदता सपत्नान अवसदनं मा पृथ्वी कृणोतु स्वाहा। ओम यस्यामन्नं ब्रीहियवो यस्या इमा पञ्चकृष्टय भूमि पर्जन्यापते नमोस्तु दै वर्खमेदं स्वाहा। ओम यस्या पूर्वकृतौ देवकृत यस्या विकृतै प्रजापतिः प्रजापतिः कर्ममासं रण्यां।

पंतनौ बहुवचनाय न यतसे वर्तमानाय च वै यसञ्चरति वै भद्रपा सम्पदां जैनस्माकं यजनं तेन मृडः स्वाहा ॐ मलवाभिर्वते गुरुपद भद्रपापं निधनं क्षितिक्षु वरारे वराहेण पृथिवीं समेत शुक्राय विजिहिते मृगाय एते अरण्या पशवो मृगा वने हिता सिंहा व्याघ्रा पुरुषादश्चरन्ति उलुभृगं पृथिवी यदुजनं दीक्षिका रक्षो अपबाधयास्ताद स्वाहा ये गन्धर्वाप्सरसो ये चाराया किमिदनं पिशाचास्त सर्वान् दक्षता दित्तानस्मद्भुवे यावयः स्वाहा ॐ या द्विपादपक्षिण सम्पतन्ति हंसा सुपर्णा सुकना वयसियस्यां वातो माधुरीसुकर्णवस्य वादस्य प्रवामुपवान वात्यर्चि स्वाहा ॐ यस्यां कृष्णमरुणं यै संविदे अहोरात्रे विदभूम्यां मदिवर्गेण

0: पुत्र पिता पुत्रमिव प्रियं प्राणो हि सर्वस्यीश्वरो यच्च प्राणधि यच्च नः स्वाहा। ओम प्राणो मृत्यु प्राणस्तग्मा प्राणं देवा उपासते प्राणो हि सत्यं आदिनमुत्तमे लोक आददत स्वाहा। ओम प्राणो विराट प्राणो दृष्टि प्राणः सर्व उपासते प्राणो ह सूर्य चंद्रमा प्राण आहु प्रजापतिं स्वाहा। ओम प्राणापानो ब्री अन्वडान प्राण उच्यते यावे प्राण आहितो अपानो ब्री उच्यते अपानिति प्राणति पुरुषे गर्भयंतरा यद त्वं प्राण जिन्वसत सजायते पुनः। प्राणम माहु मातृ स्वान् वातु ह प्राण उच्यते प्राण ह भूतं भव्यं च प्राणी सर्वं प्रतिष्ठितं स्वाहा। ओम अथर्वंगश्रम देवीर्मनुष्यजा उद ओगदे प्रजायन्ते यदावत्वं प्राण जीवसि स्वाहा। ओम यदा प्राणो अभ्यवर्षित वर्षेण पृथ्वीं मयोगदय प्रजायन्ते यदयाः कश्च विरुधः स्वाहा। ओम यस्ते प्राणिदं वेद यस्मिन्न प्रतिष्ठितं सर्वै तदैस्मै बलिमरान अस्मु अनु अमुस्मिन् लोके उत्तमे स्वाहा। ओम यदा प्राण बलिं स्तुभ्यं सर्वा प्रजा इमाः दैवा तस्मै बलिम् अहरान् शृणुवतं सश्रवः। ओम अंत गर्भश्चरति देवता सुबुधौ भूतस ऊजायते सा भूतो भव्यं भविष्यते पिता पुत्रं प्रविवेशा सचिवे स्वाहा। ओम एकं पादं नोत्खदति सलिलां द्वदं उच्चरन्न यदंगतम उद्गदेन स्वसन्य रात्रि नान्यस्यान्न व्युच्छेत् कदाचन स्वाहा। ओम अष्टाचक्रम वर्तत एक नेमी सहस्राक्षं परो नु पश्चाद् अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कथं सकेतुः। यो अस्य विश्वमजनम् एके विश्वस्य ज्येष्ठतान्येषु क्षिप्रं तस्मै प्राणा नमोस्तुते। यो अस्य सर्वजन्मना एके सर्वस्य ज्येष्ठता अदन्द्रो ब्रह्मणा धीरु प्राणो मानु तिष्ठत स्वाहा। ओम ऊर्ध्वं सुप्तेषु जागार ननु तिरिङ्गनो निभ्यतति न सुप्तम् अस्य सुप्तेषु न सुस्राव कश्चन स्वाहा। ओम प्राणमाप्रयतो न मदन्यो भविष्यति अवां गर्भम् इव जीवसि प्राणं बध्नाति त्वामयि स्वाहा। ते देवा शान्तिदा पुष्टिदा वरदा विष्टदा संकल्प सिद्धिदा भवन्तु नित्यमेव प्राण सुप्त।
1: Take the water in the right hand and three time parikrama of the fire and drop the water of the Te deva shantida tushtida pushtida sankalpa siddhida bhavatu nityameva
2: Kadananta karata.
1: Yeah, acha hi diya.
3: Keeps coming. Now they are coming.
1: Yes. Okay, drop the water.
0: ते देवा शान्तिदा पुष्टिदा वरदा पिष्टदा संकल्प सिद्धिदा भवन्तु नित्यमेव। बोले देवेश्वर भगवान की, बोले दीप नारायण जी महाप्रभु जी की, आज के आनंद की। ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು

येन बद्धौ बली राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वामनवद्नामि रक्षेमाचल माचल। एक बार इनको प्रोक्षण करो। ओम आपोष्टा मयो भुवस्तान ऊर्जय ददातना महिरणाय चक्षजयो शिव तमो रसस्य भाजयते अना उशति रिव मातर तस्मा अरंग मामवो यशक्षयाय जनयता च न अपवित्रो वित्रो वा सर्वावस्थां गतविवय स्मरित पुण्डरीकाक्षं स वै अभ्यन्तर शुचि आत्मतत्त्वं शोधया।

अहम जा निगर्भधम तम जा शिगर्भधम स्वाहा। इनको दो हाथ में। ओम गायत्री तिष्ठ जगत्या।

ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवद्भवाय नमः स्वाहा। ॐ वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमः बलविकर्णाय नमः बराय नमः बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मथाय नमः स्वाहा। ॐ अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोरघोरत्तरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमोऽस्तु ते रुद्ररूपेभ्य। ॐ तत्पुरुषा

ब्रह्मणो अधिपतिर्ब्रह्माधिपतिर् सदाशिवं स्वाहा ॐ माहेश्वराय स्वाहा यस् ॐ माहेश्वर महादेवाय स्वाहा ॐ माहेश्वर महादेवाय ते देवा शान्तिदा पुष्टिदा वरदा

राज्यं ग्रीष्म इदमः स्वाहा। ओम शब्दास्य सन्न परिधय स्त्री शब्द समिधा क्रदा दी

प्रभजंत सेना परमिणोयुधा जन स्मागं वेद विदारदानाम स्वाहा ओम बल विज्ञास्त वीर प्रवीर संवाज सन्मानुग्र अभिविरो सद्वासौ जा जय द्रमिंद्र तमाधिष्ट गोविदा ओम गोत्र विदं गोविदं वज्रभाहुं प्रमणंतमुज्जाय मग्गं सजातान्न वीरमदिन्द्रघं सकायोन सग्गं रवदं स्वाहा ओम अभिगोत्राणि सहसा गामानोदय वीर सतमिन्द्रादुश्चावर्पतनाक्खाळ युद्धयस्माकं

तमसाचदन्तां हुं फट् स्वाहा। ॐ अवशिष्टा परवद शरवी भ्रमसघं शिरे गजां मित्रान् प्रपदे समामिघाञ्चनोषि हुं फट् स्वाहा। ॐ प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु उग्रा वसन्तु बाहुना दृशा यदा सदा स्वाहा।

संपदं कुमारा विशिकाय वदन्ना इंद्रो बृहस्पतिरदिति शर्म यच्छतु विश्वा शर्म यच्छतु स्वाहा। ओम मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त राजा मृते नानुवस्तामुरुर्वर्यो वरुणस्ते कर्णोत जयन्तन्वानु देवा मदन्तु स्वाहा। ओम माहेश्वर महादेवाय ओम माहेश्वर महादेवाय ओम माहेश्वर महादेवाय ते देवा शांतिदा पुष्टिदा वरदा विष्टदा संकल्प

राम हरे सब दोज जी नाराम सब दोसे मरना है सब दोसे जी नाराम सब दोसे मरना है अरे सब दोसे शिवानंद पार परम रेली सब दोसे शिवानंद पार परम रेली सब दस नहीं मारी जात राम रेली।

0: हेली श्री दीपनारियम भगवान की जय। श्री आलक पुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय हो। विश्व गुरु महामंडलेश्वर श्री परम स्वामी जी महेश्वर नंदी गुरुदेव की जय। महामंडलेश्वर स्वामी अवतार पुरी जी महाराज की जय।
1: आज के आनंद की जय। आज के आनंद मीन्स द ब्लिस ऑफ टुडेज यज्ञ, द ब्लिस हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस वी आर ऑलवेज से जय हो टू द हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस इज समथिंग यू नो, हैप्पीनेस हैप्पीनेस ऑफ टू यज्ञ, हैप्पीनेस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। हरिओम सा, यू कैन, ओके, थैंक्स थैंक्स
2: थैंक यू।
1: थैंक्स So we will start our next yagya on 3 o'clock.

ओम अधस्ताद अनंताय स्वाहा ते देवा शांतिदा पुष्टिदा वरदा विष्टदा संकृष्ट दिक्पाला सावधाना तत्परा संयतेन्द्रिया अग्नि

रेडी स्टार्ट यान हाथ में जल रहा संकल्प अमेयो गृह गुण विशेषण विद्य विशिष्टायाम अद्य शुभ पुण्य तिथौ रुद्राभिषेक कर्मणे महादेवस्य माहेश्वर महादेवस्य भूमि पूजनार्थे होमम जपम यज्ञम मया करिष्ये।

स्वाहा ओं तन्मृतस्य वरुणस्य वीचक्षे जौ जौ रूपं गृणुतैद्धौ रूपस्तैयनन्तमनुदस्य दश्य पाजक्रश्न।

ओम असौयस्तामरोवरुणतपप्रौ समङ्गलायै चैनुकं रुद्राविदो दिक्सुचिताः सहस्रशो वैशाखुमैडैमयि स्वाहा ओम असौ यो सर्वदिन्नीलग्रीवो विलोहिता उदयनङ्गपादसन्नतसन्नुधार्य स दिष्टो मृळयादिनः स्वाहा सहस्राक्षाय मीडुके यतो येऽसि तद्वानो हन्तेभ्यः करन्नमः स्वाहा ॐ प्रपञ्च तन्मन्मुभयोर्धं रात्र्योर्जामय्या सदयस्तविघवपराधा भगवोपः स्वाहा ॐ विजयं धनुः

ओम अवतते धनुषव कंसहस्राक्षदीश्वरीनिशीर्य शल्यानामुखा शिवनासमनाभव स्वाहा ओम नमस्त आयुधाय नाददाय धिष्णवे वाभ्यं मुदते नमः बाहुद्

ओम रोहिताय स्तपदये वृक्षाणां पदये नमः स्वाहा। ओम भुवन्ते वारिवोकृतीनां पदये नमः स्वाहा। ओम नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नमः स्वाहा।

ओम नमो निगणकुतिमते तस्करा पदय नम स्वाहा ओम श्रीकाय भ्योजिका गम सदमे मुकुंदता पदय नम स्वाहा ओम नम सिंहद्यो नग्दम जरद व्यो विकृंदा पदय नम स्वाहा ओम नम उग्नि गिरीचराय कुलुंजा पदय नम स्वाहा ओम ईशु

ओम नमः स्वपद्भ्यो जागृतभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमः आसीनेभ्यो आसीनेभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमः तिष्ठभ्यो धावतभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमः सभाभ्यो सभापतिभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमः व्याधिनिभ्यो विविध्यन्तभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमः गुणाभ्यो स्त्रीगुणरतिभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमो विराजेभ्यो विराजपतिभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमो कृष्णेभ्यो कृष्णपतिभ्यो।

इंद्राय च नमः स्वाहा, ओम सर्वाय च पशुपतये च स्वाहा, ओम नीलग्रीवाय च चंद्रकंठाय च स्वाहा, ओम नमः कपर्दिने युदुकेशाय च स्वाहा, ओम सतसहस्राय सतधनवने च स्वाहा, ओम गिरिशयाय च शिविष्टाय च स्वाहा, ओम मृदुतमाय च सुमदे च स्वाहा, ओम नमो रसवाय च

0: ओम मध्यमाय चापगलभाय च नमः स्वाहा, ओम जग्न्याय बुध्न्याय च नमः स्वाहा, ओम शोभ्याय च प्रतिसर्याय च स्वाहा, ओम यामयाय च क्षेम्याय च स्वाहा, ओम श्लोक्याय च वसन्याय च स्वाहा, ओम ऊर्व्याय च कल्याय च स्वाहा, ओम नमो वन्याय च कक्षाय च स्वाहा, ओम सर्वाय च पशुपतये च सर्वाय स्वाहा, ओम आशुसेनाय चासुरदाय स्वाहा, ओम सूराय चावभैरिने च स्वाहा, ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च स्वाहा, ओम वर्मिणे च वरुदिने च स्वाहा, स्वाहा, ओम दुन्दुभ्याय च अनन्याय च स्वाहा, ओम कृष्णवे च मृष्मजाय च स्वाहा, ओम निखङ्गिणे कैदुमदे तीक्ष्णैषे चायुधिने च स्वाहा, ओम स्वायायुधाय च सौधन्वने च स्वाहा,
1: ओम नमः शुद्धाय

0: स्वाहा ओम संगवै च पशुपतये च स्वाहा
1: उग्राय च भीमाय च स्वाहा
0: ओम अग्रेवदाय च दुरेवदाय च स्वाहा ओम हन्त्रे च नियसे च
1: स्वाहा
0: ओम वृक्षेभ्यो हरिकेशभ्यश्च नमस्ताराय स्वाहा ओम नमोषम ओम नमो शंभवाय यजमयो भवाय च स्वाहा ओम शंकराय यजमयस्कराय च स्वाहा ओम शिवाय च शिवधराय च स्वाहा ओम वार्याय च वार्याय च स्वाहा ओम प्रदरणाय चोद्धरणाय च स्वाहा ओम तीर्थ्याय च कुल्याय च स्वाहा ओम सज्ज्याय च फेन्याय च स्वाहा ओम सिद्ध्याय च प्रवयाय च स्वाहा ओम किगोमशिलाय च क्षयनाय च स्वाहा ओम कवर्दिनी च पुलसी च स्वाहा ओम हिरण्याय च प्रपत्याय च स्वाहा ओम वज्राय च गोष्ठाय च स्वाहा ओम दल्व्याय च गय्याय च स्वाहा ओम काट्याय च गवरिष्ठाय च स्वाहा ओम शुष्क्याय च हरित्याय च स्वाहा

ओम य इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम दक्षिणे यमाय स्वाहा, ओम नैऋतये नैऋतदेवाय स्वाहा।

0: Ne tabii ki.
1: किताब देने से ना पाऊँ किताब देने से
0: बोल ले यार बोल ले
1: कोई नहीं कोई नहीं नहीं
0: याद नहीं मनी याद नहीं
1: सब दुख भंजन देव निरंजन सब

सबदो से जी नाराम सबदो से लेना है, सबदो से लेना राम सबदो से देना है, सबदो

0: अग्नि ना रहे हैं।
1: सो व्हेन वी आर सेइंग स्वाहा ओनली वी आर ट्राइंग टू से हा वी विल पुट दिस सेजम एंड बार्ले एंड ऑल द आहुतिस वी विल गिव टू द फायर वी विल ऑफर टू द फायर इट विल गो दैट टाइम वी विल रिपीट हा हावर ऑन दैट टाइम वी विल गिव द ऑफरिंग टू द अग्नि देवता।
0: Znači ovu mješavinu sjemenja i oraščića koja se zove ahuti nudite uz izgovor svaha, kad kažete ha, tad ispustite iz ruke.
1: And the svaha should be louder that Bhagavan Sakshat Indradev can hear that something is happening here, he can make the something I think ready or like that.
0: Na, što glasnije budete izgovarali, to je sigurnije da će se želje ostvariti, tako da sva treba biti jako glasno da prizovemo devate da nas blagoslove i ispune želje. Kao u vrijeme Bhagavana Krišne, kad je bio na planini Govardhan, jako glasno su čentali mantre i onda je Bhagavan Indradev došao sa obilatom kišom. Mi prizivamo kišu također.
2: एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां मध्य शुभ पुण्यतिथौ अष्टमी तिथौ ब्रह्मत गोत्रोत्पन्ना नेम मारियो फादर्स नेम फादर्स यस एंड ग्रैंडफादर्स नेम काश्यप गोत्रोत्पन्ना मारियो ब्रह्मत अहम अध्य कितनी आवृत्ति चतुर्थ पंचमी आवर्ति निमित्तम जपम माहेश्वर महादेवस्य भूमि पूजनम पूर्वकम यज्ञ पूर्वकम यज्ञ पंचकुंड यज्ञ पूर्वकम अध्य रुद्र जपे होमे विनियोगः हाथ छोड़ दीजिए। ओम यजाग्रद दूरमुदैति देवं तदुसुतचित दैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु शिवसंकल्पमस्तु ओम भूस्वाहा यस ओम भूस्वाहा।

इदं नमः ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा ॐ इन्द्राय स्वाहा ॐ अग्निकोणे अग्निदेवाय स्वाहा ॐ दक्षिणेयमाय स्वाहा ॐ नैऋतये नैऋत्यदेवाय स्वाहा ॐ पश्चिमे

0: ओम माहेश्वर महादेवाय
1: स्वाहा,
0: ओम वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय नमः, बलविकर्णाय नमः, बलाय नमः, बलपरमतन्नाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमः, मनोत्मथाय नमः,
1: स्वाहा,
0: ओम माहेश्वर महादेवाय
1: स्वाहा,
0: ओम अघोरेभ्यत घोरेभ्य घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमोस्तुते रुद्र रूपेभ्यः स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे।

मीतया न जनवात्सन्दमया गिरिशन्तामिजाकशेः स्वाहा। ॐ न त्वं विधातय मा जनानां यदुषस्माकम् अन्तरबभूवन्निहारेण प्रावृता जल्प्या च श्रुतव उक्तश्चरन्तु स्वाहा। ॐ विश्वकर्मा जनिष्ठदेवम् आदिगन्धर्व अभवद्दीयते दीयपदयाजनिषौषधीनामभङ्गर्भं व्यदधात् पुरत्रा। ॐ मेष्टतमः शिवतमो शिवो न

उर्वारुकमे दितो मुक्षि यमामुदस्वाहा एतदै रुद्रावसन्तैनु परौमुजौ दौतिः अवदनन्वापि नागावसकृतिवास अहिगंसन्नशिवौतिः ॐ द्रायुगं जमदग्ने कश्यपचित्रायुगं मज्जद्देवेषु द्रायुगं तन्नो वसुद्रा

जस्ताय सुवीर्याय स्वाहा ओम इमा रुद्राय धवसे कपर्दिने क्षय धीराय प्रवराम हेमदे यदा समधिपदे चतुष्वदे विषम पुष्टं ग्रामे स्वाहा ओम उग्रश्च भीमद

0: ओम उग्रम लोहितेन मित्रम सौवर्तेन रुद्रम दौवर्तेन इंद्रम प्रकृतिनेन बन मरुतो बलेन साध्यान प्रमुदा भवस्य कंठम रुद्रस्य अंतपार्श्व महादेवस्य यत्कर्ज सर्वस्य वनिष्ठो पशुपते पुरी तदस्वाहा ते देवा शांतिदा पुष्टिदा वरदा विष्णुदा महादेवाय नमो नमः
1: थ्री टाइम वदा
0: यस संकल्प सिद्धिरस्तु मे।

जन्ने क्षत्रञ्चक्षुषौरथयस्य मनसौवादी तृणं बृहस्पतिर्मै ददातु स्वाहा। ॐ सन्नो भवतु पुण्यशीयस्पति स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ कया न चित्रा भुवधूते सदा वृद्धा सखा कया सचिष्टया वृद्धा। ॐ कस्वा सत्यो।

भिन्न प्रबंध से बृहन कयास्तुद्रिव आभरस्व ओम इंद्रो विश्वसिराज दे शन्नो वसुधिपदे शं चतुष्वदे शन्नो स्वाहा ओम शन्नो मित्र संवरुण शन्नो भवत्यर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा स्वाहा ओम शन्नो भवदाम शन्नस्तपद सूर्य शन्नक्कनक्रदेव प्रदन्यो अभिवर्गदो स्वाहा ओम अहानिशं भवन्तु न संधात्रि प्रदीयताम सन्न इंद्राग्नि भवदाम भवभि सन्न इंद्रा वरुणाराधव्या ओम इंद्रा भुगणा वाजसो दोसुमिंद्रा सुविधा यशं योः स्वा ओम सन्नो देवीर्विष्ट आवो भवन्तु विदेशं गौरविश्रवन्तुनः स्वा ओम सौ ना पृथ्वी भवानिक्षिरो निवेशिनी सन्मद सर्वसपदा स्वा ओम आपो इष्टा मयो भवजान उदे ददातन मैरणाय चक्षुषे स्वाहा यो वशिवतमोरसजिवा जयते नौषधीर्यमातर स्वाहा ओम तस्मा अरङ्गमा।

मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तं मित्रस्य अहं चक्षुषा समीक्षामहे स्वाहां हृदयज्ञोऽहमज्योक्तैर्सन्द्रस्यव्यासमज्योक्तैर्सन्द्रस्यव्यासम स्वाहा ॐ नमस्ते हर्षे शौचिषे नमस्तु हसि अर्चिषे यन्यास्ते यस्मद्दबन्धो हि तव पावकौ अस्माभ्यां शिवो भव ॐ नमस्ते यस्तु विद्युते नमस्ते स्नैत्नवे नमस्ते भगवनस्तु यदस्वा समीयसे ॐ जदौ जदा समीयसे ततौ नो भयङ्करु शन्नक्रो पुरुषाभ्यो वयं न पशुभ्यः ॐ सौमित्रालाभगुदवदसन्तु दुर्मित्र्यास्तस्मै सन्तु यस्मान् दैष्टयाञ्च वयं दृष्ट्वः ॐ तच्चक्षुदेवैदं पुरुषः शुक्रमुचरद पशेम शरद शतं जीवेम शरद शतं शृणुयाम शरद शतं ब्रब्रवाम शरद सदं भूयश शरद सद

0: Amigo.
1: Yes.
2: ते देवा शांतिदा तुष्टिदा पुष्टिदा संकल्प सिद्धिदा भवतु नित्यमेव। बोले महेश्वर महादेव की
1: जय।
0: सो द फोर्थ आवर द आई थिंक फिफ्थ आवर्ती ऑफ द यज्ञ हैज बीन कंप्लीटेड एंड एज वी नो वी विल when we are standing from the yagyashala some devta is specified to have the good deeds we are calling the punyas so what we have to do with the right leg three times our leg we should do like this you know all 1 2 3 and yes we can do together 1 2 3 yeah with the right leg
3: znači trebate napraviti pranam 3 puta petom desne noge o zemlju.

और नावे मारे दाए दाए मारे हेली और नावे मारे दाए दाए मारे हेली सबद सने ही मारी जात राम मारी हेली सबद सने ही मारी जात राम सबदो से ले नाराम सबदो से देना है सबदो से देना राम शब्दों से देना है शब्दों से शिवानंद पार शब्दों से शिवानंद पार पर मरी हेली शब्दों से शिवानंद पार पर मरी हेली शब्द सने मारी जा

0: The hill will hold a tree. A tree will hold the hill. This is the symbiosis of sustainable development. As much as the rain was a blessing for the desert, it was also a symbol of blessing for the thirsty human soul, a blessing from an encounter with the king of spirituality, Holy Guruji. Sri Madhavanandaji, Swamiji's guru, is both the rain cloud and the sun, an eternally fresh breeze of saintly presence.
1: इसलिए सत्संग करना चाहिए और संतों के दर्शन करके गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। गुरुदेव का स्मरण सर्व पापों को धोके अंतकरण की शुद्धि होती है। अंतकरण शुद्ध करने के लिए प्रभु प्रार्थना और प्रभु का स्मरण और गुरुदेव की कृपा। लास्ट में कहा है गुरु कृपा ही केवलम तो शिष्य के परम मंगलम। जिसके ऊपर केवल गुरुदेव की कृपा होती है तो शिष्य के लोक परलोक में परम आनंद और मंगल हो जाता है। इसीलिए सतत गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। ये भजन गाते हो ये वेदों का सार है। ये तुम्हारे हृदय में वेद का सार यानी ज्ञान प्रकट होता है। साक्षात परमात्मा महाप्रभु जी के मुखारविंद से जो वचन निकले हैं वो वेदों से भी अधिक है। वो हो सागर से सहज तार लेते हैं।
0: The following day there was the festival of the dawn of consciousness, the light of consciousness festival. The day of Guru Purnima has dawned. Guru Purnima is the day of Gurudev's glory and the ancient verses of Guru Gita that are his hymn. All those who seek knowledge need a teacher, and one who seeks spiritual enlightenment finds a guru, a master, one who knows Atma and Paramatma, soul and God. India has kept the spiritual knowledge alive and attainable to all through direct interaction between guru and his disciple. This relationship always assumes the full commitment of the master and the surrender of a disciple.

0: देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्री नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की जय।
1: अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी अवतारपुर जी महाराज की जय।

0: ओम शलकपुर जी महादेव की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्री नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद प्रजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद प्रजी गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। सब संत शुभ महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सत्सनातन धर्म की जय। आप सब भक्तों की जय। हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।
1: महामंडलेश्वर स्वामी अवतारपुरी जी महाराज की जय।

0: गोरचरण मिया सत
1: तीर्थ है वो वेद पुराण में गाते।
0: सिद्धिप्रिय भगवान की जय।
1: श्री
0: विश्वगुण दशवापरम स्वामी नश्वंत गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की जय।

0: से आग पूरी समाधि की
1: जय।
0: जय। देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीपनारायण भगवान की जय।
1: जय
0: हिरण्यदास श्री स्वामी माता कृष्ण भगवान की
1: जय।
0: जय। विश्व गुरु महामंडल स्वामी महेश्वर जी गुरुदेव
1: की
0: जय।
1: जय।

ओम बोले सिद्धेव नारायण भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

ॐ कारबिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यम्

हथेलियों को अच्छे से मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है। क्या ना, जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुदेव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको, ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव मारदानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान

0: कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की, रात भर सेवा की, तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है। मतलब वो शांति सेवा से मिलती है, तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा ना, ईशावास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदिनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कह जाती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my
2: in America.
1: Okay.
2: To Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Daily Life Foundation Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Daily Life.
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Daily Life.
1: Yoga in Daily Life.
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji. Swamiji. DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live.

0: Friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me and we'll find a way to get the money and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
1: In rupees?
0: Yes.
1: Thank you. $1.
0: Did I say?
1: Among us, there is sitting one Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So Brahma Rishi ji, aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Mishri Lal ji, Brahma Rishi, P. Thawla, Nagore.
2: दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बने क्या, और वो भी भारत खंड के अंदर बने क्या। 84 लाख जोन में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है। 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के, जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती महाधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम, ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा, हम आए संसार में कबीरा, हम आए संसार में जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता है ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब कुछ, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है, और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना, मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 82-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में,